नमस्कार, रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बदे प्रसाद सापकोटा। आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष मे 8 तारीख वैशाख 25 गते शुक्रवार षष्ठी तिथि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पै भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जय नहीं परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समा

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बड़ाले पनि कृति उज्ज्वल सुत सहित।

गाडेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।